0: उठी गंगा लिंगे जीविष्टि ऐसा सिमटे शिता तू
1: सिमटे चौं मारे शिंदो मैप्स या गुरु जे जे जे न्यूशु चौं डॉ
0: सिंग में कोई डा
1: न्यू सिंग में कोई डा ओ अच्छा
2: मिंग चे संजूर बाला कंग बोया दी न्यू रंग लिया न्यू सिस कोई जला दी रंग के न्यू सिस नल शान जग जी
1: 你打死钱玉龙湾的亏了吧是明玉我被接了的那个是我们的主路在那家家切皮明玉给明玉那个什么的呗嗯好嘞用啊嗯压着啊拜拜
3: 我来让那些女婿钱不多。哎，可这小子，多少年这些新年连锁呢，顶着菜洗个了呗。朱莉，让俺们找个惊喜。公司钱不大，这些男不拉钱不卡最远呢，哪都有那么多大。
4: 这些家伙，我全部是给要嘛事。到时你让给他们些钱的，俺就不领规矩的给，冷的他个事。光对兄弟这个别家的，给人个兄弟总得花点儿的。主任来偷点呢，两个人都需求。
5: 用啊。哈子，咱们学不得嘞。
4: 老毛，看到。
5: 毛了，听上土里了不是？特别是这边。
3: 特别是个弱势，才能俺我这边啊。
5: 이게 뭘 비다?
0: 코나스 피에스
3: 감사
5: 감사
3: 뭘 해야 비다?
0: 뭐라 쓰래?
3: 지게 망라가 암라시
0: 도스도 지게 쇼프슬라게 멍상음이 상류 잡자
3: 老毛，从头到尾，俺做多久了？那，今天吃饭有事呗？
0: 没事呗。谁的？你媳妇的，这些来都看一下。
6: 看我最近不是不长了？
0: 看啥？看俺最近工资也不注意些。看啥？
3: 他这今拿走过来收拾我，钱都不留下贴的。
6: 是，贴的。
0: 抓他。让你二哥，你三舅的这些。

0: ये सिंगजेस न्यूवाची रंगे थांस दिर आ तोस ने मेंगा तागा जो
1: किरांगे
0: सुता चंगे चंदु में ना मिंगयू ला शोटिंग का गरानी का चुचुसी
1: योंग आ पाला अम्ला शेम दिस शुगा थेमा ना लीली कोंजु नंगमी यामा छेने गाजु यामा छेने खबा युंगुसी खंदा के कुमा सबे
0: तागसी
1: रंग पाला दों
2: 你辛苦。